0: खूनदान दी जीवनदान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी सवेरे के 6 बजे
2: भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार सब करेगा वही जो है पालनहार मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग।

पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से

अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय परत पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मय छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथारसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़ के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात।

आज हरितालिका तीज व्रत जो हमारी माताएं बड़े आनंद चित्त होकर के इस व्रत को करती हैं, इस व्रत को लेकर के ढेर सारे जगह पे चर्चा हुई कि आखिर ये व्रत सोमवार को क्यों। सबसे पहली बात, जब भी कोई पंचांग का निर्णय होता है उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठ करके उस पर छलफल और चर्चा भी करते हैं, कैसे करना उचित रहेगा। कोई ऐसा है कि जो उदया तिथि को लेकर के मान्य होता है, कुछ ही पल क्यों न आए उदया तिथि हो, और वैसे भी शास्त्र में भी आज्ञा दिया जो तृतीया चतुर्थी को स्पर्श की हुई हो उस व्रत से हमें लाभ मिलता है। एकदम भगवान की असीम अनुकंपा मिली, इसके लिए प्रभु से विनती है, प्रभु से प्रार्थना है। रही बात निर्णय की, तो ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग या अन्य पंचांगों ने एकदम स्पष्ट रूप से उसमें लिखा कि आज के ही दिन इस व्रत को किया जाए, यानी सोमवार आज ही व्रत इस हरितालिका तीज के व्रत को किया जाए। इसमें कहीं मत मतांतर नहीं है, जो निर्णय दिया उस निर्णय के आधार पर हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कितने लोगों के मन में ऐसा विचार है, तृतीया तिथि तो पूरे दिन नहीं है, कोई बात नहीं, जब उदय हो गया सूर्य का तो उसका मान्य पूरे दिन और कल के सूर्योदय तक, सूर्योदय होने से पहले तक उसी तिथि का मान्य होता है। तो आप सभी माताओं से यही नम्र निवेदन है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हरितालिका तीज व्रत आज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हरितालिका तीज का मुख्य संदेश यह है, भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, त्याग, धैर्य और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। हरितालिका तीज में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इस व्रत को विशेष रूप से सुखी दांपत्य जीवन, पति पत्नी के प्रेम और परिवार का मंगल कामना से यह व्रत जुड़ा हुआ है। प्रमुख संदेश यह है कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति, मनोकामना के लिए श्रद्धा और धैर्य, पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास, परिवार में सुख शांति और समृद्धि, माता पार्वती और भगवान शिव के प्रति भक्ति, नारी के संकल्प तपस्या और आत्मबल का सम्मान। एक बात है, जहां श्रद्धा है वहीं शक्ति है, जहां प्रेम है और वहीं समर्पण है, वहां भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद है, इसमें कतई संशय नहीं है। प्रेम में निष्ठा का संदेश भी है, माता पार्वती का शिव के प्रति प्रेम केवल सांसारिक इच्छा नहीं बल्कि उसमें गहरी श्रद्धा और समर्पण था। ऐसे तो भगवान शिव और पार्वती को कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन तीज हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल सुख के समय नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और निष्ठा से निभाने जानी। कठिन विषम परिस्थिति क्यों न आए,
लेकिन रिश्ते को उसमें भी निभाने का कोशिश किया जाए। मां पार्वती ने तपस्या, घोर तपस्या किया, कठिन तपस्या किया। तपस्या के साथ साथ में धैर्य भी है। जीवन का यह संदेश है, माता पार्वती ने कठिन तपस्या की लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। नारद जी महाराज आकर के ढेर सारे परीक्षा भी लिए लेकिन पार्वती महारानी पीछे नहीं हटी। घोर तपस्या कर रही है नारद जी महाराज। यदि आकर के जिस प्रकार से समझाए ना, उस प्रकार से यदि पार्वती मैया समझ ली हो रहती तो भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होती। तपस्या के साथ साथ दृढ़ धैर्य भी था। इसका संदेश है कि जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती। बहुत लोग कोशिश करते कि एक छलांग में हम सफलता प्राप्त कर ले, नहीं मिलता। धैर्य रखने वाला और सही मार्ग पर निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जीवन में धैर्य की भी जरूरी है। जिसके जीवन में धैर्यता आई उसके जीवन में सफलता भी तो मिली, अपने लक्ष्य तक भी तो पहुंचा। पति और पत्नी के प्रेम और सम्मान, हरितालिका तीज दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भावना और मजबूत करने का ये पर्व है। केवल पत्नी ही नहीं, पति को भी पत्नी के त्याग और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और नारी शक्ति का संदेश ही महाराज क्या बड़ी विचित्र बात है। नारी शक्तियों का यदि विशेष रूप से विश्लेषण किया जाए तो भी कम ही है। माता पार्वती को केवल एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। उनका तप, संकल्प, नारी के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। दूसरी बात, इस व्रत से मन और विचार की शुद्धि। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है कि आपने जल को परित्याग कर दिया, भोजन को परित्याग कर दिया, यह वास्तविक व्रत का लक्ष्य नहीं है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम अपने क्रोध, जिस प्रकार से आप व्रत में भोजन को परित्याग करते, इस व्रत में जल को परित्याग करते, सिर्फ अन्न और जल का परित्याग नहीं है, बशर्ते मन और विचार को शुद्धि करना ही व्रत का यह उद्देश्य है। आपने तो भोजन, जल इत्यादि त्याग दिया, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि हम अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को परित्याग करें, छोड़े और मन में भक्ति, प्रेम का करुणा बढ़ाए। परिवार की सुख शांति का एक संदेश और भी है। तीज के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती पूजा करते हुए परिवार के सुख शांति, स्वस्थ स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। इसका संदेश है कि परिवार में हमारा प्रेम बढ़े, आपसी संबंध हो, किसी का भेद न हो, दाम्पत्य जीवन अच्छे से व्यतीत हो, इस व्रत का संदेश।
हरतालिका तीज हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास, धैर्य और समर्पण का नाम है। और माता पार्वती की तपस्या ये हमें सिखलाती है कि यदि आपका संकल्प मजबूत हो तो कठिन रास्ते भी सहज में परिणत हो करके उस मंजिल के लिए, उस मंजिल को प्राप्त कराया जा सकता है और किया जा सकता है। माता पार्वती जैसे श्रद्धा, भगवान शिव जैसे धैर्य और दोनों जैसे पवित्र प्रेम, यही हरितालिका तीज का सबसे बड़ा जीवन में संदेश है। सबसे बड़ा जीवन में संदेश है। पवित्र स्नान करने के पश्चात इसमें जल का भी परित्याग किया, अन्न का भी परित्याग किया, इसमें हम लोग श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं हरितालिका तीज व्रत की पावन कथा।

मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, ऐसे माता पार्वती और शिव जो बड़े दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे भगवान शिव और पार्वती मैया को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। एक बार पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न जताती है, प्रभु हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन उसका फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान मुझे अवश्य बताइए। रहा प्रभु, एक बात और मैं कहूंगी कि किस तप व्रत दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे प्रभु मुझे प्राप्त हुए, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। आप मुझे बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। भगवान शिव कह रहे हैं।

भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपने जो पूछा ना कि किस प्रकार से आप मुझे प्राप्त हुए, तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर के मैं आपको बता रहा हूं। आप अच्छे से श्रवण करिए। यथा चोडोगरे चंद्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च। भगवान शिव कह रहे हैं, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूं, एकाग्र मन से तुम श्रवण करो। जिस व्रत करने मात्र से तुमने मेरा आधा आसन जीत लिया था, आधा आसन तुमने प्राप्त कर लिया था, वह मैं तुमको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो ना। अब यहां पर कह रहे हैं कि भाद्र मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। फिर ये जीवन में पाप आया कहां से? तो कहा जाने अनजाने में तो पाप ताप हो ही जाते, लेकिन करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बहुत दिन पहले, हे देवी, तुमने यह व्रत किया था। पार्वती मैया कह रही है, प्रभु, यही तो मैं सुनना चाह रही थी कि आप अपने मुख से मुझे श्रवण कराए। इस व्रत को मैंने क्यों किया था? करने का क्या मेरा उद्देश्य था? आप सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव कह रहे हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक पर्वत है। बड़े ही सुंदर मनोहरम वह स्थान है। नाना प्रकार के पक्षीगण भी वहां कलहल करते रहते हैं। वहां पर देवता लोग, सिद्ध गंधर्व बड़ी प्रसन्नता चित्त होकर के अप्सराएं नाचती है, गंधर्व गाते हैं, और मानो कि पर्वत राज की कितनी ही शिखर ऐसी है जिसमें स्फटिक रत्न, वैदुर्य मणि इत्यादि खाने भी बड़े पड़े हुए हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि जो है वहीं पर सुनाई देती रहती है। पर हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में वहीं पर तुमने तपस्या किया था, और इतना ही नहीं, 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टांग टांग करके केवल धुआं पी करके रही थी। कितने दिनों तक तुमने सूखे पत्ते खा करके रही थी, और माघ महीने की जब ठंड जब आती उस समय में जल में बैठ करके तुम तपस्या करती थी। इतना ही नहीं, वैशाख के जब दुपहरिया होते थे ना, तो तूने पंचाग्नि जहां बैठती थी वहां के अर्ध इर्द गिर्द में अग्नि जला करके बैठ करके तू तपस्या करती थी। श्रावण के महीने में जब जल बरसता तो सूखे भूखे प्यासी रह करके, एकदम निराहार रह करके, तुम तो एकदम मैदान में बैठ करके और तूने मेरा तपस्या करती रहती थी, स्मरण करती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि तुम्हारे पिता इस कठिन दुख को देख करके, इस तपस्या के दुख को देख करके बड़ी मन में चिंता जगी। मेरी बेटी इतनी तपस्या कर रही, इतने साधना कर रही है, बड़े दुखी हो गए।
उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं अपने कन्या विवाह करने योग्य हो चुकी, मैं अपने कन्या किसको दूं। अभी हिमांचल राजा भी मन में विचार ही कर रहे थे, उसी समय में वीणा के ऊपर श्रीमन नारायण का रट लगाते हुए वहीं पे पहुंच गए श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जाकर के पूछे, आप इतने चिंतित, इतने दुखी, आपके मुखमंडल को मैं देख करके ये कहना प्रारंभ करूं कि आप बड़ी दुखी हैं, बड़े आप विचलित हैं, क्यों, कारण क्या है? हिमवान ने कहना प्रारंभ किए कि हे नारद जी महाराज, सामर्थ्यवान मेरी कन्या जो आज इतने कठिन तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटी का शादी किसके साथ में करूं। कोई सुयोग्य वर प्राप्त हो तो मैं अपने बेटी का शादी कर देता, मेरी चिंता समाप्त हो जाती। और महाराज कैसे, तू आपका आगमन कैसे हुआ? गिरिराज ने बड़े सुंदर आसन दिए, बैठाए नारद जी महाराज के चरण धो करके, सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, बड़े प्रेम भाव से बैठाए, नारद जी महाराज से अपनी व्यथाएं सब श्रवण कराई। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ, आपके पास में आया हुआ मैं दूत हूं, और आपको यही टेंशन है ना, आपको यही चिंता है कि मैं अपने कन्या किसको दूं। और देख लीजिए, इस संसार में पूरे चराचर में भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई भी नहीं है। और हां, मैं तो यही कहूंगा कि अपने कन्या का वरण भगवान विष्णु के साथ में कर दीजिए। महाराज जी, नारद जी महाराज जब बोलते हैं ना, बड़ा अटपटा बोलते हैं। भगवान विष्णु की शादी हो गई, फिर भी यहां पर ये कह रहे हैं कि उनके जैसे वर कोई संसार में है ही नहीं, उन्हीं को दिया जाए। अब हिमवान राजा को ऐसे लगा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर के आए हैं, तो मैं ये रिश्ता पक्का करता हूं, मैं अपने कन्या का वरण भगवान विष्णु के साथ अवश्य करूंगा। इतनी ही वचन सुन करके नारद जी महाराज आकाश में विलीन हो गए। अब देखिए, नारद जी महाराज गए कहां, जो पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधार भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज भगवान विष्णु के समक्ष कह रहे हैं कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। किन से कह रहे हैं नारद जी महाराज? भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे देव, आपका मैंने विवाह पक्का कर दिया है, ना नहीं बोलिएगा। इधर नारद जी आकर के संदेश भगवान विष्णु को सुना दिए और इधर हिमांचल राजा चले गए अपनी कन्या के पास, पार्वती के पास, और जाकर के कहे कि बेटी, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ हम करना चाह रहे हैं और मैंने वादा भी कर दिया है। पार्वती मैया अपने पिता के वचन सुन करके बिना उत्तर दिए हुए नेत्रों से आंसू बहाते हुए अपने सखियों के घर चली गई, कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। एकदम साधारण से उस समय में हिमांचल राजा घर में आए, इधर पार्वती मैया बिना कहे हुए, बिना पूछे हुए
अपने सखियों के साथ चुपचाप चली गई। अपनी सखियों के घर में जाकर के धरती पे गिर करके और विलाप करना प्रारंभ कर दी, बड़ी रोने लगी। सखी आकर के बोली, अरे पार्वती तू इतना दुखी क्यों हो रही हो, कारण बताओ, दुखी होने का कारण क्या है तुम्हें, और तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी ना उससे मैं यथाशक्ति के अनुसार से मैं उसे पूरा करने का चेष्टा अवश्य करूंगी, इसमें संशय नहीं है। पार्वती मैया बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो, मैं अपने जीवन में सिर्फ भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे वचन को उन्होंने ठुकरा दिए, मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाह रहे हैं, इसी के लिए मैं अपना शरीर परित्याग कर दूंगी। सखियों ने कहा कि अरे पार्वती, अरे मूर्खता पूर्वक तुम बात करती हो, आखिर शरीर को परित्याग क्यों करना चाह रही हो, मत करो परित्याग, चलो कोई ऐसे वन में चले जहां तुम्हें तुम्हारे पिता को भी पता ना चले। पार्वती को अच्छा लगा अपनी सखियों के साथ, उसी वक्त तुरंत ही जंगल के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। बेटी जब घर में नहीं आई, खोजना प्रारंभ कर दिए, मेरी बेटी कहां चली गई, मेरी बेटी, घर घर में जाकर के खोजना प्रारंभ कर दिए। सभी दूतों को बुला करके हिमाचल राजा कह रहे हैं कि देखो मेरे पुत्री को कौन हरण करके लेकर के चला गया, किसने मेरी पुत्री को हरण कर लिया, मेरी बेटी को हरण कर लिया। अरे नारद जी महाराज आए थे, मैंने भगवान विष्णु को वचन दे दिया था, अब मेरा वचन, जीवन में पहली बार मेरा वचन खाली होगा, पता नहीं मेरी बेटी को किसने हरण कर लिया, किन देवताओं ने हरण कर लिया। ऐसे सोच करके हिमाचल राजा वहीं धरती पे मूर्छित हो गए, गिर गए। जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि हाहाकार मची, सब पूछना प्रारंभ कर दिए, मूर्छा का कारण बताइए, क्या कारण है, सब के सब इकट्ठे हो गए। हिमाचल राजा कहना प्रारंभ किए, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया, यदि ऐसा भी नहीं हुआ, हो सकता है किसी काले सर्प ने मेरे पुत्री को काट लिया हो, हो सकता है सिंह खा गए होंगे, हाय मेरी बेटी कहां गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। महाराज इस प्रकार से कांपते हुए मानो कि वृक्ष के समान कांपने लगे, वन वन में खोजे, हो सकता है मेरी बेटी को सिंह भालू हिंसक जंतु कहीं भयावह देख करके डर न लगे, कहीं मार न दिए हों। भगवान शिव कह रहे हैं, थोड़ी भी पिता की चिंता तुम्हें नहीं आई और तू एकदम घने जंगल में चली गई, एक नदी बह रही थी, रमणीक तट था, एक सुंदर सा रमणीक तट पे एक कंदरा सी बनी हुई थी, उसी कंदरा में तूने आश्रम बना लिया और बालुकामयी प्रतिमा बना करके सखियों के साथ तू वहीं पर मेरी आराधना करना तूने प्रारंभ कर दिया, साधना करना तूने प्रारंभ कर दिया, निराहार रही। एक दिन ऐसा आया जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि थी, तुमने भगवान यानी मेरी पूजा बड़ी विधिवत तूने किया, रात्रि भर जागरण किया, मुझे प्रसन्न करने के लिए रात्रि भर तू जागरण की, और उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन जो है डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पे पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बस
आप मेरे पति बन जाइए। तेरी इस प्रसन्नता को देख करके मैंने उसी वक्त उसी क्षण तथास्तु कह दिया। प्रातः का समय हुआ, उस बालुका में प्रतिमा को लेकर के तूने नदी में प्रवाहित की और सखी के साथ तूने महाव्रत का पारण भी किया। महाराज उसी वक्त हिमांचल राजा खोजते खोजते, अपनी सेनाओं के साथ खोजते खोजते उस जंगल में भी पहुंच गए। बड़े व्याकुल हो चुके थे, मूर्छा पड़ गए जब होश आई, सामने में एक आश्रम दिखाई पड़ा। दौड़ करके गए और जैसे ही पार्वती मिली अपने हृदय से लगा लिए। बिलख बिलख करके रोना प्रारंभ कर दिए। हिमवान ने पूछा कि तुम इतने घने जंगल में हिंसक व्याघ्र आदि जंतुओं के रहने वाले स्थान पे तू आकर के यहां पे पहुंच गई, कारण क्या है? मेरी तो एक ही इच्छा थी, नारद जी महाराज जब भी आए और आकर के कहे तो मैंने भगवान विष्णु को मैंने प्रतिज्ञा कर दिया है और तू हिंसक जंतुओं के बीच आकर के रह रही हो, कारण क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया,

0: हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को भगवान शिव को सौंप दिया था और मेरी बात आपने टाल दिया। हिमांचल राजा कहने नहीं, मैं सांत्वना देती हूं पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। और महाराज अपने साथ में घर लेकर के आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। और तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। जब हिमांचल राजा ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री को विष्णु को दूंगा, उसी इस वक्त तू बिना कहे हुए सखियों के साथ घर आई और मानो की हरण करके सखी ने तुम्हें जंगल में लेकर के चली गई। इसके कारण से तुमको सखियां हर लेकर के गई थी, इसी के लिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आप नाम तो बताया, इसकी विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये सब मुझे बताइए। भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत कहा। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपने शक्ति सामर्थ्यता अनुसार खूब सुंदर सा भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के मिट्टी के बना करके उसमें अच्छे से सजा करके, जो अभी के समय में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हो रही है उससे लेकर के समर्पण करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सौभाग्य की रक्षा हो इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। सामर्थ्यता हो तो विधि पूर्वक गौदान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को देना चाहिए संकल्प करके। और ये कहना चाहिए हमारे जीवन से जो दरिद्रता है वो सब समाप्त हो जाए। कुछ विधि व्यवस्था बताई कि बहुत लोग ऐसा है, इसमें बताया कि मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिट्टी खाने, मिठाई खाने से चींटी और खाने से मक्खी होती है। इस प्रकार से इसमें बड़े ही सुंदर बात स्पष्ट रूप से बताया। कह रही हैं भगवान शिव कह रहे हैं, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह मेरे समान पति को पाती है, जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के संसारिक भोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी के लिए हरितालिका तीज व्रत कथा मात्र सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है, जिसके करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाते हैं, इसमें कतई संशय नहीं है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के रेडियो भोजपुरी FM के माध्यम से हरितालिका त्रिज व्रत की कथा को आपने श्रवण किया, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जुड़े हैं आश मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टोकनी से, तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से, MD अलहिम योगापटी वजवलिया से, अभिषेक सिंह जी हर हर महादेव लिख रहे हैं गोपालगंज से, राजमंगल सिंह जी नगवा से, मनोज गुप्ता जी आरोसी किराना पसल विश्रामपुर 4 बलिरामपुर से, राजकुमार माली जी परसौनी से, जिज्ञासा झा जी अभी जुड़ी हुई हैं बिहार से, दीवाना पान भंडार गमरिया से श्याम सुंदर बैठा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और नियमित श्रोता राम छत्री पंडित जी प्रगति नगर से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, और उसी क्रम में हैं अर्जुन कुमार अकेला जी, राधे राधे गुरुजी मैंने पाल बिहारी रेडियो श्रोता संघ बैकुंठधाम बिहार से, संजय जी के साथ इस कार्यक्रम को रसपान कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, ढेर सारा धन्यवाद। मुझे आशा विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको अच्छा लगा होगा। इसी शुभेच्छाओं के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से, बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
1: जो लोग डायबिटीज परेशान है परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट एक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया साइटिका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासी खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554953
1: और 9097160602।
5: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगी छन हो गोड़।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख ना बबी, आग से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन।

550 36867 98013 65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी
2: जी आप सही सुने कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
1: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
2: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
1: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
3: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 MHz में
1: अभी सवेरे के 7 बजे।
2: अनेकता में एक, यो हो भोजपुरी FM 92.8।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
0: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160।
4: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
5: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
6: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
7: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
6: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
8: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो गोर।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जो सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जो 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868646।
7: ए चाचा जी, रौ लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रौ अपन लाठी।
8: अरे देख न बबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
7: चली चाचा जी, रौरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
8: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
7: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
8: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
7: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
8: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
7: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
8: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
10: भोजपुरी FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में अभी सवेरे के 8 बजे।
1: नमस्ते।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता, प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहले कारी लगी छन, गोल

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
6: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
7: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
6: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
8: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
7: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, TB तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
6: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
9: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525668646।
10: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
11: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
12: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी, अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
12: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
13: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो, यही है कार्यक्रम सत्संग।

0: पारात्र के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में
1: शिव मेरी पूजा
0: प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
6: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
8: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
9: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जो सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जो 5 साल ज्यादा दिखेला, ये सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं खे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में,
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब,
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी, संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुड़ते हैं।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी सवेरे के 9 बजे।
2: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो, यही है कार्यक्रम सत्संग।

पारात्र के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अरे बापरे इतना सुंदर
1: तो सुना दी आओ चाल कर मुकेश भाई क्या शरमनाथ भाई क्या की सुना दी सब गाँव लोग भोजपुरिया ए भेम जय सुनेला।

download from dhoonweb.in.

0: फरस
1: संख्या बोल ही बड़ू बोल।

0: दिन लेट कर रही वाया
1: पढ़े वाला लोईकन के डूबलो चंपा रात में
2: हरी दही दा
3: डाउनलोड फ्रॉम dhunweb.in
4: अनेकतामा एक यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
9: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
5: और 9097160602।
10: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज
11: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
12: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
13: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
14: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर।
12: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
15: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लबिसन हो गोर भगेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262, 523, 58579 आ 98525-6846।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुवरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुवरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
10: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
0: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: ए चाचा जी, रौ लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी होने हैली रौ अपन लाठी।
6: अरे देख न बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
5: चली चाचा जी, रौरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
7: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
5: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
7: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
5: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
7: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
5: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
7: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
8: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36-867, 9803-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: radioweb.in
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
2: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
5: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
4: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
10: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
11: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
12: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहले काली लवी छन हो गोर भगे।

0: पतिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए किसी होटल में जाए
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867 98013 65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाबू?
9: जीजा मैंने तैयार ना होगी।
8: ओहो,

0: आज भाव हो जाए दो
1: www.dhoonweb.in।
2: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
3: करी खूनदान दी जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 10 बजे।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्त कारखाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगे छन, गोर भ गए।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ ई है भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियरा गइल बा आ हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर।
0: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
6: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
8: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
9: अरे देख ना बाबी यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटाए सदा खुश रखे।
8: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
9: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है
8: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
9: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
8: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
9: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
8: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
9: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो गोर।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: बहुत सकर हम तीन बाहर में खाना निकाल के रखा तो
1: खाना चाहिए चाहे खाना
0: अरे हई का खाना कहा गई लोग

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-65523, 58579 आ 98525-68646।
7: कोलार्क रिसोर्ट, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
10: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमते रहें।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम से भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी सवेरे के 11 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: ना व्यास रहे दे
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।

0: अनेकतामा एक, यो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यहाँ स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक टा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूस, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात क्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोर।

0: गोरिल्ला क्रीम नहीं यूज करी थी। ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ ई है भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्योर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोर भगे।

0: मोतिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9803065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

के प्यार में बानी ट्रेंड हो, तोहरा जैसन आइटम के कितना बजवले बानी बैंड हो। अरे यार छमिया।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाली,
2: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: पटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमक क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमक क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमक क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: पटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ, यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: Hello everyone.
1: Namaste, मैं हूँ सारा अली खान.
0: और मैं हूँ विकी कौशल.
1: We hope you love this music video.
0: Do like and share and do not forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel.

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गए।

0: घटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36 867, 98013 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन में अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द किंग अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, ये सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यू, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भर

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: 92.8 फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया एफएम।

0: करी खूनदान दी जीवनदान टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी दोपहर के 2 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: बिछुआ दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा।
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
2: डाक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, आहा तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
5: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
4: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज
8: खाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता, प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
10: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
7: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
10: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
11: अरे वाह भौजी, अरे चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोर।

0: गोरिल्ला क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन, स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: क्लार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भर

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में।
1: अभी दोपहर के 3 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: डाक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का भयकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखी के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी
3: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स
4: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
3: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
9: एक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
10: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
11: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लवी छन हो गोर भगे

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोर भर

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 4 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9813065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़ आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
15: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगी छन, गोर

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: ये है भोजपुरिया FM 92.8 FM FM सुनते रहो सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो गोर।

0: गोरिया क्रीम नहि यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुड़ते हैं।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी संजिया के 5 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में,
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन, हो गोर भगे।

0: पतिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868046।
15: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल

0: और भी आपने सुना था
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमा क्यूर
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो गोर।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक टा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी संध्या के 6 बजे।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो, गोर भर

0: पतिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता, प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बायकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब,
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, रौ लाठी हेने बाटे आ खोज तानी हो ने हैली रौ अपन लाठी।
4: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रौरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
4: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
4: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
4: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
4: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
5: सूचना, भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850 36 867, 9803 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन, हो गोर भ

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर, बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।

कारण करुणा वृणालय पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मयी छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग।

आज हरितालिका तीज व्रत जो हमारी माताएं बड़े आनंद चित्त होकर के इस व्रत को करती हैं,

कैसे करना उचित रहेगा? कोई ऐसा है कि जो उदया तिथि को लेकर के मान्य होता है, कुछ ही पल क्यों न आए उदया तिथि हो, और वैसे भी शास्त्र में भी आज्ञा दिया जो तृतीया चतुर्थी को स्पर्श की हुई हो उस व्रत से हमें लाभ मिलता है। एकदम भगवान की असीम अनुकंपा मिली, इसके लिए प्रभु से विनती है, प्रभु से प्रार्थना है। रही बात निर्णय की, तो ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग या अन्य पंचांगों ने एकदम स्पष्ट रूप से उसमें लिखा कि आज के ही दिन इस व्रत को किया जाए, यानी सोमवार आज ही व्रत, इस हरितालिका तीज के व्रत को किया जाए। इसमें कहीं मत मतांतर नहीं है, जो निर्णय दिया उस निर्णय के आधार पर हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कितने लोगों के मन में ऐसा विचार है, तृतीया तिथि तो पूरे दिन नहीं है, कोई बात नहीं, जब उदय हो गया सूर्य का तो उसका मान्य पूरे दिन, और कल के सूर्योदय तक, सूर्योदय होने से पहले तक उसी तिथि का मान्य होता है। तो आप सभी माताओं से यही नम्र निवेदन है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हरितालिका तीज व्रत आज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हरितालिका तीज का मुख्य संदेश यह है, भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, त्याग, धैर्य और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। हरितालिका तीज में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इस व्रत को विशेष रूप से सुखी दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के प्रेम और परिवार का मंगल कामना से यह व्रत जुड़ा हुआ है। प्रमुख संदेश यह है कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति, मनोकामना के लिए श्रद्धा और धैर्य, पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास, परिवार में सुख शांति और समृद्धि, माता पार्वती और भगवान शिव के प्रति भक्ति, नारी के संकल्प तपस्या और आत्मबल का सम्मान। एक बात है, जहां श्रद्धा है वहीं शक्ति है, जहां प्रेम है और वहीं समर्पण है, वहां भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद है, इसमें कतई संशय नहीं है। प्रेम में निष्ठा का संदेश भी है। माता पार्वती का शिव के प्रति प्रेम केवल सांसारिक इच्छा नहीं, बल्कि उसमें गहरी श्रद्धा और समर्पण था। ऐसे तो भगवान शिव और पार्वती को कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन तीज हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और निष्ठा से निभाने जानी। कठिन विषम परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन रिश्ते को उसमें भी निभाने का कोशिश किया जाए। मां पार्वती ने तपस्या, घोर तपस्या किया, कठिन तपस्या किया, तपस्या के साथ साथ में धैर्य भी है। जीवन का यह संदेश है, माता पार्वती ने कठिन तपस्या की लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। नारद जी महाराज आकर के ढेर सारे परीक्षा भी लिए, लेकिन पार्वती महारानी पीछे नहीं हटी, घोर तपस्या कर रही है। नारद जी महाराज यदि आकर के जिस प्रकार से समझाए ना, उस प्रकार से यदि

पार्वती मैया समझ ली हो रहती तो भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होती। तपस्या के साथ साथ दृढ़ धैर्य भी था। इसका संदेश है कि जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती। बहुत लोग कोशिश करते हैं हम सफलता प्राप्त कर ले, नहीं मिलता। धैर्य रखने वाला और सही मार्ग पर निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जीवन में धैर्य की भी जरूरी है। जिसके जीवन में धैर्यता आई उसके जीवन में सफलता भी तो मिली, अपने लक्ष्य तक भी तो पहुंचा। पति और पत्नी के प्रेम और सम्मान, हरितालिका तीज, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भावना और मजबूत करने का ये पर्व है। केवल पत्नी ही नहीं, पति को भी पत्नी के त्याग और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और नारी शक्ति का संदेश ही महाराज क्या बड़ी विचित्र बात है। नारी शक्तियों का यदि विशेष रूप से विश्लेषण किया जाए तो भी कम ही है। माता पार्वती को केवल एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। उनका तप, संकल्प, नारी के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। दूसरी बात, इस व्रत से मन और विचार की शुद्धि। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है कि आपने जल को परित्याग कर दिया, भोजन को परित्याग कर दिया, यह वास्तविक व्रत का लक्ष्य नहीं है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम अपने क्रोध, जिस प्रकार से आप व्रत में भोजन को परित्याग करते, इस व्रत में जल को परित्याग करते, सिर्फ अन्न और जल का परित्याग नहीं है, बशर्ते मन और विचार को शुद्धि करना ही व्रत का यह उद्देश्य है। आपने तो भोजन, जल इत्यादि त्याग दिया, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि हम अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को परित्याग करें, छोड़ें और मन में भक्ति, प्रेम का करुणा बढ़ाएं। परिवार की सुख शांति का एक संदेश और भी है। तीज के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती पूजा करते हुए परिवार के सुख शांति, स्वस्थ स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। इसका संदेश है कि परिवार में हमारा प्रेम बढ़े, आपसी संबंध हो, किसी का मतभेद न हो, दाम्पत्य जीवन अच्छे से व्यतीत हो, इस व्रत का संदेश। हरितालिका तीज हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम केवल मांगने का नाम नहीं बल्कि त्याग, विश्वास, धैर्य और समर्पण का नाम है। और माता पार्वती की तपस्या ये हमें सिखलाती है कि यदि आपका संकल्प मजबूत हो तो कठिन रास्ते भी सहज में परिणत हो करके उस मंजिल के लिए, उस मंजिल को प्राप्त कराया जा सकता है और किया जा सकता है। माता पार्वती जैसे श्रद्धा, भगवान शिव जैसे धैर्य और दोनों जैसे पवित्र प्रेम, यही हरितालिका तीज का सबसे बड़ा जीवन में संदेश है।
सबसे बड़ा जीवन में संदेश है। पवित्र स्नान करने के पश्चात इसमें जल का भी परित्याग किया, अन्न का भी परित्याग किया, इसमें हम लोग श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं हरितालिका त्रिज व्रत की पावन कथा।

मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, ऐसे माता पार्वती और शिव जो बड़े दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे भगवान शिव और पार्वती मैया को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। एक बार पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न जताती है, प्रभु हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन उसका फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान मुझे अवश्य बताइए। रहा प्रभु, एक बात और मैं कहूंगी कि किस तप व्रत दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे प्रभु मुझे प्राप्त हुए, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। आप मुझे बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। भगवान शिव कह रहे हैं,

भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपने जो पूछा ना कि किस प्रकार से आप मुझे प्राप्त हुए, तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर के मैं आपको बता रहा हूं। आप अच्छे से श्रवण करिए।

0: वाचा।
1: भगवान शिव कह रहे हैं जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूं, एकाग्र मन से तुम श्रवण करो। जिस व्रत करने मात्र से तुमने मेरा आधा आसन जीत लिया था, आधा आसन तुमने प्राप्त कर लिया था, वह मैं तुमको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो ना। अब यहां पर कह रहे हैं कि भाद्र मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। फिर ये जीवन में पाप आया कहां से? तो कहा जाने अनजाने में तो पाप ताप हो ही जाते, लेकिन करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बहुत दिन पहले हे देवी तुमने यह व्रत किया था। पार्वती मैया कह रही है, प्रभु यही तो मैं सुनना चाह रही थी कि आप अपने मुख से मुझे श्रवण कराए। इस व्रत को मैंने क्यों किया था, करने का क्या मेरा उद्देश्य था, आप सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव कह रहे हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक पर्वत है, बड़े ही सुंदर मनोहरम वह स्थान है, नाना प्रकार के पक्षीगण भी वहां कलहल करते रहते हैं। वहां पर देवता लोग सिद्ध गंधर्व बड़ी प्रसन्नता चित्त होकर के अप्सराएं नाचती है, गंधर्व गाते हैं, और मानो कि पर्वत राज की कितनी ही शिखर ऐसी है जिसमें स्फटिक रत्न वैदुर्य मणि इत्यादि खाने भी भरे पड़े हुए हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर बर्फ से आच्छादित रहते हैं, गंगा जल की ध्वनि जो है वहीं पर सुनाई देती रहती है। और हे पार्वती तुमने बाल्यावस्था में वहीं पर तुमने तपस्या किया था, और इतना ही नहीं 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टांग टांग करके केवल धुआं पी करके रही थी। कितने दिनों तक तुमने सूखे पत्ते खा करके रही थी, और माघ महीने की जब ठंड जब आती उस समय में जल में बैठ करके तुम तपस्या करती थी। इतना ही नहीं वैशाख के जब दुपहरिया होते थे ना, तो तूने पंचाग्नि जहां बैठती थी वहां के अर्ध इर्द गिर्द में अग्नि जला करके बैठ करके तू तपस्या करती थी। श्रावण के महीने में जब जल बरसता तो सूखे भूखे प्यासी रह करके एकदम निराहार रह करके तुम तो एकदम मैदान में बैठ करके तूने मेरा तपस्या करती रहती थी, स्मरण करती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि तुम्हारे पिता इस कठिन दुख को देख करके, इस तपस्या के दुख को देख करके बड़ी मन में चिंता जगी, मेरी बेटी इतनी तपस्या कर रही, इतनी साधना कर रही है, बड़े दुखी हो गए। उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं अपने कन्या विवाह करने योग्य हो चुकी, मैं अपने कन्या किसको दूं। अभी ही मांचल राजा भी मन में विचार ही कर रहे थे, उसी समय में वीणा के ऊपर श्रीमन नारायण का रट लगाते हुए वहीं पे पहुंच गए श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जाकर के पूछे, आप इतने चिंतित, इतने दुखी, आपके मुखमंडल को मैं देख करके ये कहना प्रारंभ करूं कि आप बड़ी दुखी हैं, बड़े आप विचलित हैं, क्यों, कारण क्या है? हिमवान ने कहना प्रारंभ किया कि हे नारद जी महाराज, सामर्थ्यवान मेरी कन्या जो आज इतनी कठिन तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी का शादी किसके साथ में करूं, कोई सुयोग्य वर प्राप्त हो तो मैं अपने बेटी का शादी कर देता, मेरी चिंता समाप्त हो जाती। और महाराज कैसे, तू आपका आगमन कैसे हुआ? गिरिराज ने बड़े सुंदर आसन दिए, बैठाए नारद जी महाराज के चरण धो करके, सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, बड़े प्रेम भाव से बैठाए। नारद जी महाराज से अपनी व्यथाएं सब श्रवण कराई। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ, आपके पास में आया हुआ मैं दूत हूं, और आपको यही टेंशन है ना, आपको यही चिंता है कि मैं अपने कन्या किसको दूं। और देख लीजिए, इस संसार में पूरे चराचर में भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई भी नहीं है। और हां, मैं तो यही कहूंगा कि अपने कन्या का वरण भगवान विष्णु के साथ में कर दीजिए। महाराज जी, नारद जी महाराज जब बोलते हैं ना, बड़ा अटपटा बोलते हैं। भगवान विष्णु की शादी हो गई, फिर भी यहां पर ये कह रहे हैं कि उनके जैसे वर कोई संसार में है ही नहीं, उन्हीं को दिया जाए। अब हिमवान राजा को ऐसे लगा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर के आए हैं, तो मैं ये रिश्ता पक्का करता हूं, मैं अपनी कन्या का वरण भगवान विष्णु के साथ अवश्य करूंगा। इतने ये वचन सुनकर के नारद जी महाराज आकाश में विलीन हो गए। अब देखिए, नारद जी महाराज गए कहां, जो पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधार भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज भगवान विष्णु के समक्ष कह रहे हैं कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। किन से कह रहे हैं नारद जी महाराज? भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे देव, आपका मैंने विवाह पक्का कर दिया है, ना नहीं बोलिएगा। इधर नारद जी आकर के संदेश भगवान विष्णु को सुना दिए और इधर हिमवान हिमांचल राजा चले गए अपनी कन्या के पास, पार्वती के पास, और जाकर के कहे कि बेटी, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ हम करना चाह रहे हैं और मैंने वादा भी कर दिया है। पार्वती मैया अपने पिता के वचन सुन करके बिना उत्तर दिए हुए नेत्रों से आंसू बहाते हुए अपने सखियों के घर चली गई, कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। एकदम साधारण से उस समय में हिमांचल राजा घर में आए। इधर पार्वती मैया बिना कहे हुए, बिना पूछे हुए अपने सखियों के साथ चुपचाप चली गई। अपनी सखियों के घर में जाकर के धरती पे गिर करके और विलाप करना प्रारंभ कर दी, बड़ी रोने लगी। सखी आकर के बोली, अरे पार्वती, तू इतना दुखी क्यों हो रही हो? कारण बताओ, दुखी होने का कारण क्या है तुम्हें? और तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी ना, उससे मैं यथाशक्ति के अनुसार से मैं उसे पूरा करने का चेष्टा अवश्य करूंगी, इसमें संशय नहीं है। पार्वती मैया बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। मैं अपने जीवन में सिर्फ भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी मेरे वचन को उन्होंने ठुकरा दिए। मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाह रहे हैं, इसी के लिए मैं अपना शरीर परित्याग कर दूंगी। सखियों ने कहा कि अरे पार्वती, अरे मूर्खता पूर्वक तुम बात करती हो, आखिर शरीर को परित्याग क्यों करना चाह रही हो, मत करो परित्याग, चलो कोई ऐसे वन में चले जहां तुम्हें तुम्हारे पिता को भी पता ना चले। पार्वती को अच्छा लगा अपने सखियों के साथ, उसी वक्त तुरंत ही जंगल के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। बेटी जब घर में नहीं आई खोजना प्रारंभ कर दिए, मेरी बेटी कहां चली गई, मेरी बेटी, घर घर में जाकर के खोजना प्रारंभ कर दिए। सभी दूतों को बुला करके हिमांचल राजा कह रहे हैं कि जी देखो मेरी पुत्री को कौन हरण करके लेकर के चला गया, किसने मेरी पुत्री को हरण कर लिया, मेरी बेटी को हरण कर लिया। अरे नारद जी महाराज आए थे, मैंने भगवान विष्णु को वचन दे दिया था, अब मेरा वचन, जीवन में पहली बार मेरा वचन खाली होगा, पता नहीं मेरी बेटी को किसने हरण कर लिया, किन देवताओं ने हरण कर लिया। ऐसे सोच करके हिमांचल राजा वहीं धरती पे मूर्छित हो गए, गिर गए। जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि हाहाकार मची, सब पूछना प्रारंभ कर दिए, मूर्छा का कारण बताइए, क्या कारण है, सब के सब इकट्ठे हो गए। हिमांचल राजा कहना प्रारंभ किए, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया, यदि ऐसा भी नहीं हुआ हो सकता है किसी काले सर्प ने मेरी पुत्री को काट लिया हो, हो सकता है सिंह खा गए होंगे, हाय मेरी बेटी कहां गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। महाराज इस प्रकार से कांपते हुए मानो कि वृक्ष के समान कांपने लगे, वन वन में खोजे, हो सकता है मेरी बेटी को सिंह भालू हिंसक जंतु कहीं भयावह देख करके डर न लगे, कहीं मार न दिए हो। भगवान शिव कह रहे हैं थोड़ी भी पिता की चिंता तुम्हें नहीं आई और तू एकदम घने जंगल में चली गई, एक नदी बह रही थी, रमणीक तट था, एक सुंदर सा रमणीक तट पे एक कंदरा सी बनी हुई थी, उसी कंदरा में तूने आश्रम बना लिया और बालुकामयी प्रतिमा बना करके सखियों के साथ तू वहीं पर मेरी आराधना करना तूने प्रारंभ कर दिया, साधना करना तूने प्रारंभ कर दिया, निराहार रही। एक दिन ऐसा आया जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि थी, तुमने भगवान यानी मेरी पूजा बड़ी विधिवत तूने किया, रात्रि भर जागरण किया, मुझे प्रसन्न करने के लिए रात्रि भर तू जागरण की और उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन जो है डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पे पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बस आप मेरे पति बन जाइए। तेरी इस प्रसन्नता को देख करके मैंने उसी वक्त उसी क्षण तथास्तु कह दिया। प्रातः का समय हुआ, उस बालुका में प्रतिमा को लेकर के तूने नदी में प्रवाहित की और सखी के साथ तूने महाव्रत का पारण भी किया। महाराज उसी वक्त हिमांचल राजा खोजते खोजते अपनी सेनाओं के साथ खोजते खोजते उस जंगल में भी पहुंच गए, बड़े व्याकुल हो चुके थे, मूर्छा पड़ गए। जब होश आई सामने में एक आश्रम दिखाई पड़ा, दौड़ करके गए और जैसे ही पार्वती मिली अपने हृदय से लगा लिए। बिलख बिलख करके रोना प्रारंभ कर दिए। हिमवान ने पूछा कि तुम इतने घने जंगल में हिंसक व्याघ्र आदि जंतुओं की रहने वाले स्थान पे तू आकर के यहां पे पहुंच गई, कारण क्या है? मेरी तो एक ही इच्छा थी, नारद जी महाराज जब भी आए और आकर के कहे तो मैंने भगवान विष्णु को मैंने प्रतिज्ञा कर दिया है और तू हिंसक जंतुओं के बीच आकर के रह रही हो, कारण क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, श्रृणुतात मया

हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को भगवान शिव को सौंप दिया था और मेरी बात आपने टाल दिया। हिमांचल राजा कहने नहीं, मैं सांत्वना देती हूं पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। और महाराज अपने साथ में घर लेकर के आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। और तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। जब हिमांचल राजा ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री को विष्णु को दूंगा, उसी इस वक्त तू बिना कहे हुए सखियों के साथ घर आई और मानव की हरण करके सखी ने तुम्हें जंगल में लेकर के चली गई। इसके कारण से तुमको सखियां हर लेकर के गई थी, इसी के लिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आप नाम तो बताया, इसकी विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये सब मुझे बताइए। भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत कहा। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपने शक्ति सामर्थ्यता अनुसार खूब सुंदर सा भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के मिट्टी के बना करके उसमें अच्छे से सजा करके, जो अभी के समय में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हो रही है उससे लेकर के समर्पण करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सौभाग्य की रक्षा हो इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। सामर्थ्यता हो तो विधिपूर्वक गौदान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को देना चाहिए संकल्प करके। और ये कहना चाहिए हमारे जीवन से जो दरिद्रता है वो सब समाप्त हो जाए। कुछ विधि व्यवस्था बताई कि बहुत लोग ऐसा है, इसमें बताया कि मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिट्टी खाने, मिठाई खाने से चींटी और खाने से मक्खी होती है। इस प्रकार से इसमें बड़े ही सुंदर बात स्पष्ट रूप से बताया। कह रही हैं भगवान शिव कह रहे हैं, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह मेरे समान पति को पाती है, जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के संसारिक भोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी के लिए हरितालिका तीज व्रत कथा मात्र सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है, जिसके करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाते हैं, इसमें कतई संशय नहीं है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के रेडियो भोजपुरी FM के माध्यम से हरितालिका त्रिज व्रत की कथा को आपने श्रवण किया, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जुड़े हैं आश मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टोकनी से, तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से, MD अलहिम योगापटी उजवलिया से, अभिषेक सिंह जी हर हर महादेव लिख रहे हैं गोपालगंज से, राजमंगल सिंह जी नगवा से, मनोज गुप्ता जी आरोसी किराना पसल विश्रामपुर 4 बलिरामपुर से, राजकुमार माली जी परसौनी से, जिज्ञासा झा जी अभी जुड़ी हुई हैं बिहार से, दीवाना पान भंडार गमरिया से श्याम सुंदर बैठा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और नियमित श्रोता रामछत्री पंडित जी प्रगति नगर से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, और उसी क्रम में हैं अर्जुन कुमार अकेला जी, राधे राधे गुरुजी मैनेपाल बिहारी रेडियो श्रोता संघ बैकुंठ धाम बिहार से, संजय जी के साथ इस कार्यक्रम को रसपान कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, ढेर सारा धन्यवाद। मुझे आशा विश्वास है कि कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको अच्छा लगा होगा। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से, बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
10: अरे देख ना बाबी यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटाए सदा खुश रखे।
9: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
11: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है
9: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
9: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
9: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
13: ए रामू भैया राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
12: सुनो बबी देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
14: उठाओ सर इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
13: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
12: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
15: डॉक्टर मोबीन हाशमी, मोबाइल नंबर 7209-55466, 7262-523, 58579 आ 98525-68646।
16: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो, गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी संजिया के 8 बजे
3: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज पर अभी रुवा सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बायकर इलाज
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जब सांस दम फूलेला उ समस्या।
8: गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स
9: जी। अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं खे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए,
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36 867, 98013 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
0: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरी FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7091-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
15: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो गोर।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचे में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा आ हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी रात के 9 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो, यही है कार्यक्रम सत्संग।

सत्र के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात।

0: और अभी आपने सुना था
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सुराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में शरदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात
7: दम फूलेला।